देखो वैसे तो आईफोन को बनाने में काफी पैसा लगता है और अलग अलग तरीके से लगता है। जैसे आईफोन का फ्रेम के लगभग 1900 रुपए का आता है, बैटरी 360 रुपए की, डिस्प्ले 7236 की जो सैमसंग बनाता है, कैमरा भी लगभग 7500 का जो सोनी बनाता है। उसके बाद एप्पल की खुद की A15 Pro की जो 8200 की आती है, और फिर 5G मॉडल जो भी लगभग 8000 तक का आता है, तो टोटल होता है लगभग 40000 के आसपास। और ये दिखता 1.5 लाख का है। अब एक सकता तो ये इतना अमिताभ बच्चन खुद आता नहीं है गाना गाने। चलो आप देखते हैं एक आईफोन को बनाने में।